इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की। बुद्ध के रूप में कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की, तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: श्रोते हो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 ह्या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 ह्या क्रमांकावर.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, क्या आपने कभी उस नासमझ मछली को देखा है जो पानी में मजे से तैर रही होती हैं? उसे पूरे समंदर की आज़ादी मिली होती है, लेकिन तभी एक शिकारी पानी में कांटा डालता है और उस कांटे के मुंह पर मांस का एक छोटा सा टुकड़ा लगा देता है. वह मछली उस मांस के टुकड़े को देखती हैं, उसका मन ललचाता है, वह भूल जाती हैं कि वह आज़ाद हैं, वह भूल जाती हैं कि यह एक जाल हो सकता है. वह केवल उस क्षणिक स्वाद के चक्कर में जैसे ही उस टुकड़े पर मुंह मारती हैं, वह कांटा उसके हलक में फंस जाता है. अब वह लाख तड़पें, लाख छटपटाएं, वह शिकारी के चंगुल से आज़ाद नहीं हो सकती. हमारी कहानी भी कुछ अलग नहीं है. हम भी केवल आँखों के, कान के या जीभ के थोड़े से स्वाद और वासना के चक्कर में अपनी पूरी आज़ादी और अपनी आत्मिक शांति बेच बैठते हैं. कबीर साहब आज हमें इसी भीतरी गुलामी और उसके कड़वे नतीजे का आईना दिखा रहे हैं. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र. कबीर न बिकरे पद्या, गया स्वाद के साथी, गलका खाया बरजता, अब क्यों आवे हाथी. कबीर न बिकरे पद्या,

0: श्रोताओं, कबीर साहब जीवों की नासमझी और इंद्रियों के जाल को उजागर करते हुए कहते हैं, कबीर ना बिकरे पद्या। यह जो मनुष्य था, यह जो साधक था, वह पहले कभी विकारों के रास्ते पर नहीं पड़ा था। वह बिकरा यानी विकृत या पतित नहीं था। इसकी चेतना साफ थी, गया स्वाद के साथी, पर इसकी सारी समझदारी, सारा विवेक तब धरा का धरा रह गया जब यह इंद्रियों के क्षणिक स्वाद यानी वासनाओं और सांसारिक सुखों के लालच के साथी हो लिया, उसके पीछे भागने लगा। इस भटकाव का परिणाम क्या हुआ? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, गलका खाया बरजता। गलका एक ऐसे कड़वे या विषैले फल का प्रतीक है जो ऊपर से बड़ा लुभावना लगता है लेकिन भीतर से जीव को नष्ट कर देता है। कबीर कहते हैं कि विवेक के बार बार बरजता यानी मना करने और रोकने के बावजूद इस मन ने उस वासना के गलके को खा लिया, उस दलदल में छलांग लगा दी। अब क्यों आवे हाथी? और अब जब वह इंद्रियों के जाल में पूरी तरह फंस चुका है, आदतों का गुलाम हो चुका है, तो वह मन अब दोबारा हाथी क्यों आवे? यानी नियंत्रण में कैसे आ सकता है? अब वह चाहकर भी खुद को उस दलदल से आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएगा। यह दोहा इंद्रिय संयम और आसक्ति के मनोविज्ञान का चरमोत्कर्ष है। वेदांत दर्शन में कहा गया है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच ऐसे विषय हैं जिनसे केवल एक एक के वश में होकर हिरण, हाथी, पतंगा, मछली और भंवरा अपनी जान गवा देते हैं। फिर उस मनुष्य की क्या गति होगी जो इन पांचों स्वादों के पीछे भाग रहा हो? गलका हमारे जीवन की उन्हीं तात्कालिक और नश्वर सुखों का प्रतीक है जो शुरू से अमृत जैसा लगता है लेकिन अंत में विष बन जाता है। कबीर समझा रहे हैं कि एक बार मन गलत आदतों और वासनाओं के गहरे गर्त में गिर जाता है तो चेतना की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए बुद्धिमानी वही है जो स्वाद की शुरुआत में ही होश का पहरा बिठा लें। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने जीवन की आदतों को देखिए। हम जिन चीज़ों के गुलाम बन चुके हैं, चाहे वह कोई नशा हो, किसी के प्रति अंधा मोह हो, मोबाइल की स्क्रीन का चस्का हो या क्रोध और अहंकार का स्वाद हो, सोचिए कि क्या शुरू में हमने ही इन्हें मजे के लिए चुना था? विवेक ने हमें टोका था पर हम स्वाद के पीछे भागते रहे और आज स्थिति यह है कि हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं पर मन हमारे काबू में नहीं आता। आज कोशिश कीजिए इस गलके को पहचानने की। जब भी आपका मन किसी क्षणिक स्वाद का गलत आदत की तरफ बढ़ने लगे तो मछली के उस कांटे को याद कर लीजिए, वहीं ठहर जाइए और अपने भीतर उस राम नाम के अमृत का स्वाद चखिए जिसके आगे संसार के सारे स्वाद फीके और तुच्छ लगने लगते हैं। जब भीतर का रस गहरा होगा तो बाहर का कोई भी सम्मोहन आपको डिगा नहीं पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजन ने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मन भावन 90.8 FM अलवेज हट
2: जा। तथागता, विचार और कर्मों का संसरण और पुनर्भाव। तूने कहा यथार्थ मानवी जीवन, यह सत्य है। जन्म होना, यह सत्य है। दुख सत्य है, मृत्यु भी सत्य है। तूने अविवेकी प्रश्न बात कर दिए। अविवेकी प्रश्नों के उत्तरों से कोई फल निष्पत्ति नहीं, कोई लाभ नहीं। तब ऐसे मस्तिष्क भ्रमिष्ट करने वाले और हजारों वर्ष काल्पनिकता के चक्र में घुमाने वाले, भ्रमित करने वाले अविवेकी प्रश्नों को तुमने व्यर्थ सिद्ध किया। कहां उनसे अव्याकृत और मनुष्य का ध्यान विवेक की ओर मोड़ दिया। शील संवर्धन के मार्ग से नीतिमान बनाने की प्रक्रिया में प्रज्ञाशील के परोपकारी भाव से कैसे जीवन जीना है, यह तूने सिखाया। दुख से जुड़ना और दुख से लड़ना, यह तूने हमें सिखाया। तूने कहा दुख यह सत्य है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका आना निश्चित है। इसलिए दुख सत्य, दुख समुदाय सत्य, दुख निरोध सत्य, दुख निरोध का मार्ग सत्य, इसका मार्ग तूने दिखाया। दुख यानी केवल नकारात्मकता। बुद्ध सिर्फ दुखों पर ही बोलते हैं, ऐसी तेरी आलोचना हुई। परंतु हे तथागता, तू सिर्फ दुख का ही आलाप न आलापते हुए उपाय का प्रभावी मार्ग भी बता गया। विश्व बना है अणु रेणु और परमाणु से, कलापों से। यह विज्ञान की आज से कुछ साल पहले की वर्तमान कालीन खोजें। यही बात तुमने 2500 वर्ष पहले प्रतिपादित की थी। विश्व की संरचना सिद्ध करते समय अलग लिखे अपने तप सामर्थ्य से, न पद्धति का खोखलापन अन साधना के लिए। जब कठोर कष्ट तेरी देह को झेलना पड़ा, तब 5 श्रमण पंचवर्गीय भिक्कु तेरी सेवा में रत थे। परंतु तूने जान लिया शरीर में बल ही नहीं, इसीलिए ऊर्जा नहीं, इसीलिए साधना में प्रबलता नहीं, एकाग्रता नहीं। देह दुर्बलता के कारण तुझे नदी का जल ग्रहण करते समय कितनी यातना सहनी पड़ी। धूल से लथपथ देह को सरपट खींचते हुए ले जाना पड़ा नदी के तट तक। ऊर्जा के बिना इतना अशक्त कि तुझे लगा प्राण निकल जाएंगे इसी क्षण देह से। धूल से लथपथ देह थकान से पेड़ से सटा बैठा रहा तू, और सुजाता आई खीर लेकर वन देवता को चढ़ाने। उसे लगा तुम वन देवता ही हो। उसने दान कर दी खीर तुझे श्रद्धा भाव से। खीर के प्राशन से तुझे थोड़ा बल मिला और तूने मध्यम मार्ग का उद्घोष किया। रिक्त खीर का पात्र तूने फेंक दिया नदी पात्र में उलट दिशा से, और संकल्प कर लिया यदि मुझे ज्ञान प्राप्ति होगी तो यह खीर पात्र पानी के प्रवाह के साथ बहते वापिस लौटेगा नहीं। पात्र अदृश्य हुआ, पर तू मात्र दृढ़ विश्वास के साथ वापिस लौट आया ज्ञान प्राप्ति का संकल्प और जिज्ञासा से। बोधि वृक्ष के तले पालथी मारे बैठा रहा, पद्मासन ध्यान मुद्रा में अर्धोन्मिलित नेत्रों से संकल्प किया ज्ञान प्राप्ति का, बुद्धत्व प्राप्ति का। अब हो जाए कुछ भी, घटित हो जाने दे कुछ भी, उथल पुथल हो जाए कितना भी, चाहे आफतों की लड़ी लग जाए, पर बुद्धत्व प्राप्ति के बिना उठना ही नहीं है, ऐसा संकल्प तेरा, तेरा अधिष्ठान के ज्ञान बिंदु की ओर।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हैप्पीनेस के इंडेक्स को हम देखते हैं तो आज भी हमें लगता है कि इंडेक्स जो है वो अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। हमारी मंजिल क्या है, क्या हम उसे स्टेबिलिटी पर ला सकते हैं, एक इस लेवल पर ला सकते हैं अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को? कोशिश यही कर रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में। सबसे बड़ी बात, हमारे जो पहला प्रयास है वो ये कि कम से कम इसको देख तो पाएं कि दिन भर में हम जो है ऊपर नीचे अपने इमोशंस के साथ होते हैं, खासकर हैप्पीनेस के साथ होते हैं। मंजिल तक पहुंचते जाएंगे जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे। आज भी कुछ और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जो मुझे टेक ओवर कर जाता है और फिर मेरी अपनी हैप्पीनेस जो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ वो नहीं क्रिएट कर पाता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, सिचुएशन जब थी, हमारी ये आदत कैसे बनी कि सिचुएशन ने हमें टेक ओवर किया? आई होप आई एम राइट, बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि सिचुएशन आई, हम पहले डिटैच रहते हैं, उसके बाद हम जजमेंटल होना शुरू होते हैं लोगों के प्रति या अपने प्रति भी, और उसके बाद हमारी सारी इमोशंस जो हैं वो पूरी सिचुएशन टेक ओवर कर जाती है। व्हाट टू डू नाउ?
1: वन इज तो इसको वॉच करना ही शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और प्रैक्टिस करें कि जैसे एक ड्रामा देखते हैं या एक मूवी देखते हैं तो हम ऑडियंस में बैठते हैं ना, ऑडियंस से बैठकर वहाँ देखते हैं कि स्टेज पर क्या हो रहा है। इस तरह से जीवन की यात्रा में भी चलते हुए ऑडियंस भी बनते जाएं बीच बीच में, यू नो इट इज़ अ लिटल वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ दैट। लेकिन होता क्या है कि हम स्टेज पर भी हैं, सो हम एक्टर भी हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ हमें क्या बनना
0: है? व्यूअर,
1: ऑडियंस भी बनना है। क्यों ऑडियंस बनना है? कि ऑडियंस बनने से हम डिटैच्ड होते हैं, यू नो आई एम एन ऑडियंस, ये सब ड्रामा चल रहा है, ऑल द एक्टर्स आर प्लेइंग द रोल। तो डिटैच होकर उनको देखें, जजमेंटल होकर नहीं। जैसे ही जजमेंटल हो गए तो हम उनके रोल के अंदर उनके साथ।
0: That's what I'm saying, as an audience also, I was becoming a part of the whole thing.
1: No, as a detached observer, साक्षी होकर हर एक के रोल को देखते जाएं। जैसे ही आप साक्षी होकर हर एक के रोल को देखेंगे, आपका माइंड कैसे होता जाएगा? It will become still. उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। और साक्षी होकर दूसरों के रोल को देखते हुए फिर जब अपना रोल प्ले करेंगे तो वो रोल कैसे होगा? You know, then I will be a creative actor. कि मैं जो अपना रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड स्टिल है, स्टेबल है, तो क्रिएटिव है। एक डिस्टर्ब्ड माइंड क्रिएटिव नहीं हो सकता। अभी जब हम ऑटोमेटिक मोड में चल रहे थे तब ये था, आपने जो कहा या जो किया वो मेरे ऊपर इफेक्ट आया, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी
0: कुछ भी नहीं,
1: उसमें कुछ भी नहीं थी। Did I have the power to say to myself कि irrespective of उन्होंने जो बोला है I can remain stable? No, I said नहीं, ये तो natural है, उन्होंने बोला तो मुझे बुरा लगेगा। तो मतलब मेरे पास power नहीं थी कि मैं अपने role को कैसे

0: प्ले करें या हमारा रोल अपने आप ही बनता जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू पीपल. तो वो क्यों? क्योंकि हम हर एक के रोल में इतना घुसे हुए हैं और उनके रोल पर इतने जजमेंटल हो रहे हैं कि उस टाइम पर हम अपने रोल को क्रिएट करना भूल जाते हैं.
1: जब हम फिल्म ही नहीं देख पा रहे, जब हम ड्रामा ही नहीं देख पा रहे वो जज यू नो एक व्यूअर के रूप में, एक साक्षी भाव से, तो हम अपने जीवन में तो
0: आज सारा दिन अगर एक बार ट्राई करें, सिर्फ एक दिन, क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम किसी के भी रोल को या कहें किसी को भी जज नहीं करते. आज एक दिन, एक दिन नहीं
1: वो
0: करते,
1: अच्छा है, वो गंदा है, वो एक्टिंग कर रहा है,
0: कुछ भी नहीं, या उनको ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं, एक दिन नहीं करते. हमें करना है या नहीं करना है, लेकिन ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट्स जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन डे. अच्छा, इवन इफ वन डे इज टू मच फॉर यू, जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन आवर. आपको एक दिन ज्यादा भारी लग रहा था क्या?
1: क्योंकि हमें पता था कि पूरे दिन में हमने बहुत सारे लोग ऐसे आने हैं, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आनी है जो हम भूल जाएंगे.
0: तो एक घंटा इज पॉसिबल ना. तो एक घंटा ये करके देखना कि यू नो जस्ट ट्राई टू क्रॉस दैट वन आवर विदाउट गोइंग हर एक के बारे में हर एक सिचुएशन के बारे में. एंड जस्ट एट द एंड ऑफ दैट वन आवर जस्ट सी हाउ यू फील. आप कैसा फील करते हैं वो चेक करना पड़ेगा. क्योंकि ये जो हो रहा है वो ये कि हर एक के रोल के अंदर आई गेट सक्ड, यू नो, आई गेट सक्ड इनटू योर रोल. यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड नॉट बी लाइक दिस, यू शुड स्पीक लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस. आई कुड बी सेइंग दिस बट इवन इफ आई एम नॉट सेइंग, आई एम थिंकिंग लाइक दिस. यू नो, बहुत सारी जजमेंट्स हम बोल नहीं रहे.
1: एक्चुअली
0: सोच तो सारा
1: मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि अभी एक घंटा जो हम देंगे उसमें अगर कोई सिचुएशन नहीं आई तब तक तो मैं ठीक ही रहूंगा, लेकिन उस एक घंटे में मैं सोचता भी तो बहुत कुछ.
0: बात सोचने की हो रही है. जजमेंटल इज नॉट अपने शब्दों में, जजमेंटल है यहाँ सोचने में. तो एक घंटा अगर ट्राई करें कि जो है जैसा है एवरीवन इज ओके, एक घंटा आई एम नॉट गोइंग टू जज, तो उसमें आपको एक घंटे के एंड में पता चलेगा आपकी बहुत सारी एनर्जी जो ऐसे ही ऐसे सक, यू नो, एवरीवन इज, वी वुड से दैट एवरीवन इज सकिंग माय एनर्जी लाइक दिस. सो इट्स नॉट एवरीवन सकिंग, आई एम गिविंग माय एनर्जी टू एवरीवन.
1: अननेसेसरी,
0: आई एम गिविंग इट आउट एंड आफ्टर गिविंग इट आउट आई फील एम्प्टी. यहाँ खाली हो जाते हैं. और जब जजमेंटल हो रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स पॉजिटिव भी नहीं है ज्यादा. इट्स मोर ऑफ हर एक की कमियां कमजोरियां बहुत ज्यादा हम देखते. तो ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी. एक एक की वीकनेस देखते देखते यहाँ हालत क्या हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे. तो अगर हम जो ये साक्षी भाव टीवी के सामने नहीं कर पा रहे, इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि एक घंटा लेट मी जस्ट बी डिटैच्ड, नो वन एंड नो सिचुएशन विल अफेक्ट मी फॉर वन आवर. तो हमें पता चलेगा कि डिटैच्ड होने से कितना अंदर पावर भरती है. फिर जो सेकेंड स्टेज हम वॉच कर सकते हैं, जब मैंने आपको देखना बंद कर दिया तो मैं अपने को देखना शुरू कर देती हूँ. मैं यहाँ आई इवैल्यूएट कि यहाँ क्या हो रहा है. आप जो लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि अपने थॉट्स नहीं, हम आई कैन नॉट सी माय थॉट्स, व्हाई कैन नॉट आई सी माय
1: थॉट्स, सो मच आउट.
0: सी, एट वन टाइम मेरा ध्यान एक ही पर जा सकता है. तो एक सेकेंड, अगर वो एक सेकेंड मैं आपके बारे में सोच रही हूँ तो मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं देती. तो जब बहुत ज्यादा और चीजों के बारे में हम सोचते हैं तो ये अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता. थोड़ी देर के लिए यहाँ देखना शुरू
1: करें. एक घंटा, जस्ट वन आवर हम अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सिचुएशन के बारे में भी तो सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से शिवानी
0: फिर सोचेंगे क्या हो जाएगा. एक घंटा सोचेंगे,
1: फिर हम ना सिचुएशन रहे, ना लोग रहे, ना फिर अब क्या होगा.
0: इट्स नॉट सिचुएशन के बारे में या लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे
1: कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती तो अच्छा होता.
0: ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा. सी, वो ये भी हमें पता नहीं है कि हम कितने जजमेंटल हैं, क्योंकि हमने कभी
1: ध्यान
0: देखा नहीं है. जब देखना शुरू करेंगे ना तब पता चलेगा, अच्छा अच्छा, आई क्रिएट दीज काइंड ऑफ थॉट्स अबाउट एवरीवन. राइट नाउ वी नॉट इवन अवेयर के व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट फॉर एवरीवन. सो वन डे इट्स नॉट दैट आई स्टॉप थिंकिंग. See, no one should do it unnaturally. Yes, yes. Oh, मैंने कुछ नहीं सोचना है, मैंने कुछ नहीं सोचना है. आप अपना नॉर्मल चलो, जैसे आप चल रहे हो. सिर्फ ध्यान दो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करो. और जैसे ही आपको वो थॉट मिले कि मैं ये सोच रहा हूँ, इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, आई जस्ट स्टॉप एंड आई टेल माई सेल्फ इट्स ओके. For one hour, I am not going to create.
1: Yeah, ऐसा सोचें कि वो please ऐसा करे, because we have to be very, very clear.

0: कि हमें क्या नहीं सोचना है.
1: एब्सोल्युटली. और हमें क्या सोचना है कि वो जो हैं जैसे हैं
0: अच्छे.
1: इट्स ओके. एक्सेप्ट. एक्सेप्ट. एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि आई एग्री विद यू.
0: वही मैं कहने वाली थी कि फिर हम तो देखिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए और मुझे किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को टोटालिटी में देखना होगा ना, क्लैरिटी में. मुझे उनके नेगेटिव भी देखने होंगे, पॉजिटिव भी देखने होंगे. सो अगेन, क्या मैं अपने आप को उनका नेगेटिव, क्योंकि होता यह है कि जब मुझे उनके बारे में जजमेंटल नहीं होना तो मैं ये कहूंगा कि मैं उनका नेगेटिव देखूंगा ही नहीं.
1: यू नो इट्स नॉट, दिस इज अ गुड पॉइंट, बट इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट्स ओनली दैट वी आर डिफरेंट.
0: या बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव,
1: वी आर डिफरेंट. मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो मैं अपने लिए पॉजिटिव की कैटेगरी में डालूंगी, और जो मुझे नहीं अच्छी लगती आई पुट देम इन द नेगेटिव. लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे टाइम पर आना अच्छा लगता है, तो जो भी लेट आए वो मेरे लिए क्या है,
0: गलत हो गया,
1: नेगेटिव है. लेकिन वो एक्चुअली जो लेट आ रहा है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस बात से, दे आर जस्ट कंफर्टेबल विद द वे दे आर.
0: फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं शिवानी जो कहा जाता है कि जो सही ही है, यू नो, मर्यादाओं में रहते हुए, मतलब समाज में रहते हुए कि टाइम पे आना तो इट्स अ
1: सी. मर्यादाएं भी कौन बना रहा है? इवन इफ यू जस्ट सी द कल्चर इन द ईस्ट एंड यू सी द कल्चर इन द वेस्ट, आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाई देगा. जब हम अभी लंदन गए रिसेंटली, सो हमने व्हाट डिड वी सी, वी सॉ दैट जो ट्रैफिक वहां पर चलता है वो बहुत स्मूथ चलता है. हम लोग रोड पर ऐसे खड़े थे क्रॉस करने के लिए, वो गाड़ी रुक गई एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट आस्क्ड द सिस्टर, आई सेड हमने कुछ गलत किया है क्या, वो गाड़ी क्यों रुक गई? तो शी सेड वो गाड़ी रुकी है ताकि आप क्रॉस कर जाओ. नाउ दिस इज एन एलियन कॉन्सेप्ट फॉर मी, इट डजंट हैपन हियर. सो एवरीवन हैज क्रिएटेड देयर ओन कल्चर, देयर ओन वे ऑफ लिविंग. तो हम कहेंगे वहां ऐसा नहीं होता. नाउ इट्स नॉट अबाउट वो राइट है या इंडिया में जो होता है वो, दे जस्ट बोथ राइट फॉर देम. बट हम तुरंत जजमेंटल हो जाएंगे,
0: देखा
1: ये राइट है वो वाला रॉन्ग है या ये वाला राइट है. नो इट्स नॉट, इट्स जस्ट दैट इट्स डिफरेंट. जैसे हम राइट और रॉन्ग उसको लेबल कर देते हैं तो एनर्जी चेंज हो जाती है. सी इफ आई से यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी. बट इफ आई से यू आर रॉन्ग, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. So when I create this thought about anyone कि ये different है, it may be कि मेरे से match नहीं करता आपका वो संस्कार, आपका वो स्वभाव, आपका वो व्यवहार. लेकिन when I create a thought ये different है, I may not like it, but if I say this is wrong, this is bad, then what energy I send out to you? This is negative energy. This is lack of respect. This is lack of love, and this will create a disturbance here. If I acceptance means I agree, aap different hai, main different hu, I accept the difference. I don't resist the difference. I accept. Jab hum resist karte hain difference ko, to hum dusre ko apni tarah banane ki koshish karte rehte hain, kyunki humne judgment ye pass ki hai ki main sahi hu, aap galat hain. Between a parent and a child, ye bahut critical hai.
0: Even husband wife, you know.
1: Yeah. Yes. Parent and child, why I said, because parents बहुत ज़्यादा ये authority के साथ हर time हम चलते कि हम सही हैं, बच्चे गलत हैं. See, again, intention बहुत अच्छी है. कई बार intention बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है, मतलब उनको empower करना है ना, लेकिन जगह हम ये energy भेजते हैं कि you're wrong, you're bad, this is wrong, तो हम उसको empower नहीं कर रहे, हम उसको actually disempower कर रहे.
0: अगर कोई drugs ले रहा है या smoke कर रहा है या drink कर रहा है, how do we take it, you know? This is again, it's very difficult because first thought which will come is that he needs to change, he needs to stop.
1: He needs to change is a different energy, and he is bad is a different energy.
0: Actually, I consciously tried to be, not create the thought, but the first thing which comes to your mind is, this is wrong.
1: Yeah, this. अब क्या होता कि जो भी बच्चा ऐसा कुछ ले रहा है, बच्चे क्यों, बड़े भी ऐसे ले रहे हैं कोई, तो घर में पूरा वायुमंडल ये बन जाता, आप गलत हैं, आप बुरे हैं, ये पाप है, ये, you know, this kind of energy.
0: और हमारा क्या होगा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, you know, it's like forget about, वो तो खैर है ही गलत, हमारी जिंदगी में हमारे ही बच्चे ने ये करना था.
1: तो फिर वो मेरी पेरेंटिंग स्किल पर भी तो क्वेश्चन मार्क उठ जाता है ना. तो ये जब हम एनर्जी, पहली बात, जो भी कुछ ऐसा कोई स्टिम्युलेंट ले रहा है उसके जीवन में कुछ थोड़ा सा तो वैक्यूम है, यू नो, समवेयर सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो है, एंड ये स्टिम्युलेंट्स मुझे उसको भरने में मदद करते हैं. लेकिन अब वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ, वो कोई हर्ट के साथ, दर्द के साथ मैंने वो लेना शुरू किया, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड एम्पावरिंग मी हाउ टू कम आउट ऑफ माय पेन, सबसे मुझे क्या मिला? आप बुरे हो, आप गलत हो, आप ये
0: rejection,
1: हो, रिजेक्शन मिला. मैंने एक्चुअली वो लेना ही इसलिए शुरू किया होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो रिजेक्शन की एनर्जी या हर्ट की एनर्जी थी. अब एक्चुअली वो छोड़ने के लिए मुझे चाहिए होगा कि वो भरा जाए, वो जो मेरे अंदर का वैक्यूम है वो भरा जाए. लेकिन हमारी इंटेंशन बहुत राइट होती है, हम चाहते हैं कि वो बच जाए उन चीजों से, लेकिन हम उसके रूट को नहीं देखते हैं. हम ये देखते हैं कि ये ले रहा है, ये इसकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, तो हम उसको रोज कहते हैं ये गलत है, ये छोड़ दो. हम ये नहीं समझते ये क्यों ले रहा है, और वो जो रीजन जिसके कारण ये ले रहा है वो तो इससे भी ज्यादा बुरा है. अगर मेरे अंदर कोई दर्द है, वो दर्द तो इस स्मोकिंग से या अल्कोहल से भी ज्यादा बुरा है. ये स्मोकिंग और अल्कोहल मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, ओके, लेकिन वो जो दर्द मैंने पकड़ के रखा है, रिजेंटमेंट, वो मेरे लिए कितना हानिकारक है. तो आई जस्ट नीड टू गो वन स्टेप बिहाइंड. जेन्युइन लव है ना, कंसर्न है, तो क्या करे, एक स्टेप पीछे जाए. ये स्टिम्युलेंट्स छूट जाएंगे अपने आप, लेट इट बी राइट नाउ फॉर सम टाइम. एक स्टेप पीछे जाकर ये क्यों ले रहे हैं, वैक्यूम है. तो इंस्टेड ऑफ उनको ये एनर्जी भेजे कि आप गलत हो, इफ यू कैन सेंड देम दैट एनर्जी ऑफ लव, ऑफ रिस्पेक्ट. हम कहते हैं लेकिन प्यार तो हम बहुत करते हैं ना, प्यार में हम बार बार ये नहीं कह सकते आप बुरे हो, आप गलत हो, ये पाप है. ये दूसरे को डिसएम्पावर करता है. आप उस बात को साइड रखो कि वो क्या ले रहे हैं, आप इग्नोर कर दो, इवन इग्नोर कर दो आप उसको थोड़े दिन के लिए. आप सिर्फ उसके वो दर्द को भरो, जस्ट बाय गिविंग जेन्युइन रिस्पेक्ट, नॉट बाय सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलकर, अंदर से वो भर जाएगा ना, वो स्टिम्युलेंट तो ऐसे छूट जाएगा. और अगर वो भरेगा नहीं, आप रोज लड़ते रहो उस बात के लिए कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो.
0: उससे भी पहले अपने आप को तो भरें, यू नो, क्योंकि हमने इतना दर्द क्रिएट किया है इस पूरे थॉट से कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ये कर रही है, या मेरा हस्बैंड ये कर रहा है. एंड सो वी जस्ट गो इनटू सो मच ऑफ अ डीप, यस.
1: सो वन, नाउ अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंट, अगर कोई मेरे आसपास ऐसा कुछ कर रहा है,
0: तो आई एम नॉट बैड,
1: नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट इट. आप जजमेंटल नहीं होते ना जैसे, तो सामने वाले को आपसे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है. और जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, भले आप बोलेंगे कुछ नहीं, आप ऊपर से बात अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी
0: उन्हें पता होता है, यू नो, सो मेनी टाइम्स दे से दैट आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग,
1: एग्जैक्टली, सो दैट एनर्जी रीचेस. तो एक दिन के लिए ये ट्राई करना कि औरों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, फिर अपने थॉट्स को देखना शुरू करना, अपनी फीलिंग्स को, इमो, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये जो थॉट्स भी हो रहे हैं ना, ये क्रिएट किए जा रहे हैं. आई एम क्रिएटिंग दीज थॉट्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस थॉट्स, आई एम नॉट इवन द थॉट, आई एम नॉट दिस रोल, आई एम नॉट दिस, यू नो, द बॉडी, बट आई एम नॉट इवन द थॉट, दैट ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग, आई क्रिएट दैट थॉट. जैसे ही आप उस लेवल पर आते हैं कि आई क्रिएट दिस थॉट, आई क्रिएट दिस फीलिंग, आप थॉट से भी डिटैच हो सकते हैं. आप, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला
0: ये थॉट मैंने क्रिएट कर दिया,
1: तो मतलब मैं कोई और हूँ ना. जैसे मैंने कहा ये मैंने क्रिएट किया, तो मैं कोई और हूँ. एंड ये स्थिति में जब आप पहुंचते, तो दिस इज स्टिलनेस, जो हम कई बार बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस वॉट इज दैट स्टिलनेस, वॉट इज साइलेंस. तो साइलेंस है, एक तो यहाँ से साइलेंस, और एक है यहाँ साइलेंस. तो यहाँ साइलेंस मतलब ये नहीं कि हम सोचना बंद कर देंगे. कई बार भाई बहने मेडिटेशन मीन्स ट्राई करते हैं हम थॉट्स ही नहीं क्रिएट करें, नॉट रियली पॉसिबल. लेकिन सिर्फ साक्षी होकर देखें कि ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जैसे ही वो देखेंगे ना, उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट इनर स्टेबिलिटी, दैट साइलेंस, दैट पीस. ये एक्सपीरियंस करना है. क्या होता है, नॉर्मल में, नॉर्मल एक्टिविटी में वी आर क्रिएटिंग अबाउट 25 टू 30 थॉट्स पर मिनट. दिस इज मेडिकली बीन कैलकुलेटेड. ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो मशीन होती है, उस पर ये वेव्स आते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन बिहाइंड दैट. 25 टू 30 थॉट्स
0: पर मिनट,
1: पर मिनट नॉर्मल स्टेट में. इसको हम कहते हैं बीटा स्टेज ऑफ द माइंड, के नॉर्मल स्टेट ऑफ द माइंड में. और अगर हम माइंड के वेरियस स्टेजेस को देखें सारा दिन, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम टू सारा दिन में 40,000, 40,000 to 50,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं. दिस इज माई प्रोडक्शन. ये जैसे एक कंपनी है और उसकी ये प्रोडक्शन है, 40,000 थॉट्स अ डे. क्वालिटी
0: It's all waste, actually. maximum times, you know.
1: तो उसमें कई thoughts बहुत powerful, positive होते, कई negative होते हैं, गुस्सा, resentment, चिंता, कई necessary होते हैं कि ये करना है, आज ये जान, और बहुत सारे waste होते हैं. Waste मतलब बहुत ज़्यादा जो बीत गया, या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना जो अभी हुआ ही नहीं, तो उसमें कोई पावर नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, नीदर द पास्ट नॉर द फ्यूचर. तो इतनी सारी हमारी थॉट्स की स्पीड है. आर वी एवर अवेयर कि हम एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? तो इसलिए बहुत फास्ट है. तो जब हम मेडिटेशन में बैठते तो ये धीरे धीरे स्लो होता. मेडिटेशन भी नहीं, अगर आप सिर्फ इसको वॉच करना शुरू कर दो, ये स्लो डाउन हो जाएगा. यू विल गेट टू सी द स्पीड. और तब अगर इसको हम थोड़ा सा भी स्लो करते तो हमें लगता है ये तो हमने सोचना ही बंद कर दिया. तो सोचना बंद नहीं किया, लेकिन सोचने की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है. तो हैप्पीनेस मीन्स व्हेन माय थॉट्स डोंट गो लाइक दिस, बट दे आर एब्सोल्युटली स्टेबल. एक कंटेंटमेंट, एक इनर पीस. हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं कि संतुष्टता क्या है, सैटिस्फैक्शन क्या है, पीस क्या है. इट्स ऑल दिस फीलिंग वेयर यू आर इनसाइड एक्चुअली जस्ट कंफर्टेबल. जब भी ऐसे ऐसे कुछ भी होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल स्टेबल हैं, कंटेंटेड हैं. दिस इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज नॉट एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट इज डिफरेंट. हमने आइसक्रीम खाई आज, कहते आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर, दैट्स नॉट हैप्पीनेस. वो तो एक सेंसेशन है. एक सेंसेशन थी टेस्ट बड के द्वारा मुझे मिली, एंड दैट इज यू नो गिविंग मी दैट सेंसेशन. आई से दिस इज हैप्पीनेस. सपोज लेट्स से कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आज कुछ हुआ ना, वो ठीक हो गया. से आई एम वेरी हैप्पी, यू नो माई, दिस इज नॉट हैप्पीनेस. वो दर्द था, आई हैव गॉट रिलीव्ड फ्रॉम माई पेन, सो इट्स अ रिलीफ. देन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड. लेकिन हम इन सारी चीज़ों को नाम क्या दे देते हैं? हैप्पीनेस. और इस प्रोसेस में हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है वो भूल जाती
0: है. तो वो जो सारी चीजें अगर हमें नहीं मिल रही हैं तो हम से वी से दैट वी आर नॉट गेटिंग हैप्पी.
1: या दैट्स व्हाई. एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इट आउटसाइड. तो हैप्पीनेस चाहिए नहीं, एक्चुअली कुछ भी नहीं करना है खुश रहने के लिए. खुश हम ऑलरेडी हैं. सी इट्स अ डिफरेंट थिंग. एक है कि यहाँ यू नो इट्स लाइक अ ग्लास. आई एम गोइंग थ्रू लाइफ टूडे विद द फोकस कि ये जो मेरा ग्लास है ना, ये खाली है, प्लीज इसको भरो. कुछ ना कुछ ऐसा होता जाए जिससे ये भरता जाए. जस्ट चेंज द फोकस वन डे कि ये ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है. अब सिर्फ सारा दिन क्या करना,
0: इसको बाहर नहीं जाने देना,
1: संभाल के चलना है कि हर छोटी छोटी बात में ये स्पिल ऑफ नहीं कर जाए. क्योंकि ये इतना जल्दी स्पिल ऑफ करते जाते हैं सारा दिन में, फिर एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड आवरसेल्फ्स वेरी एम्प्टी, वेरी डिप्लीटेड.
0: बट दिस बिकम्स वेरी बोरिंग.
1: अगेन अगर आपने एक्साइटमेंट को अपनी हैप्पीनेस के साथ रिलेट कर दिया,
0: तो जब वो नहीं होगी तो
1: हाँ. और एक्साइटमेंट भी बहुत हेल्दी नहीं है एक्चुअली माइंड के लिए. एंड जैसे फियर है तो वो लो स्टेट है, एक्साइटमेंट उसका अदर ऑपोजिट है. तो ये दोनों चीजें स्टेबिलिटी नहीं है. और फिर हम दोनों
0: एक्चुअली हम दोनों में वी से दैट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, यू नो,
1: इट गिव्स अ वेरी
0: पिट ऑफ माय स्टमक, ऐसे कुछ फील होता है, चाहे डर लग रहा है, चाहे बहुत खुशी हो रही हो.
1: एंड दोनों चीजों में आपको अपनी फिजियोलॉजी पर इम्पैक्ट दिखाई देगा
0: शरीर पर.
1: यहाँ नॉर्मल नहीं रहता है आपकी हार्ट. एक्साइटमेंट में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है नहीं, डर में भी आपकी हार्ट बीट नॉर्मल, आपकी पल्स रेट नॉर्मल, एनीथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल. Now we know this is what is abnormal, but we thought ये normal है. See, मन पर तो शायद हमें अभी नहीं पता चले कि कितना impact पड़ रहा है, physiology पर तो दिखाई दे रहा ना. तुरंत you will find your heart beating so fast. How's that normal? The happiness is that stability. तो अब क्या होगा, situation specific नहीं है. अब चाहे कुछ भी हो जाए सारा दिन मेरे आसपास, मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी stability को नहीं खोना है. इट डजेंट मीन मैं कुछ नहीं करूं, मैं कुछ नहीं कहूं किसी को. बच्चे ने कुछ गलत किया, मैं कहूं या नहीं कहूं? कहें, लेकिन दो चॉइसेस हैं, या तो गुस्सा होकर कहें, डिस्टर्ब होकर कहें, या फिर स्टेबल रहकर करें. वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? वी थॉट रिएक्ट करना, गुस्से से बोलना, डिस्टर्ब होना, दिस इज द ओनली वे टू डिसिप्लिन समबडी. सुनो, सो व्हाट वी कुड ट्राई वन डे इज डू एवरीथिंग. आपको काम करवाना है लोगों से, आप काम करवाओ, डिस्टर्ब हुए बना. और इसको सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट करना है. वी ऑलवेज ट्राई दिस एज अ 24-hour एक्सपेरिमेंट. 24 घंटे इसको ट्राई करना है कि आज एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आसपास. एंड कुछ भी देन मीन्स कुछ भी, कुछ भी, जस्ट वन डे आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, जस्ट वन डे आई विल डू एवरीथिंग जस्ट विद दिस रिमेम्बरेंस, आज एक दिन स्टेबल, और यू विल रियलाइज ये बहुत बहुत ईजी है. इट्स सिर्फ किया नहीं था अभी तक, ट्रैफिक में अटके, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं, किसी ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया, कैसे चलाते हैं पता नहीं, इनको लाइसेंस कौन दे देता है, ऐसे ही है, ये तो ये है सारी सारा दिन. सिर्फ एक दिन वो नहीं करना है, सब कुछ करना है, सिर्फ एक दिन डिस्टर्ब नहीं हो. कैसे हो रहा है, नहीं, किसी ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया, कैसे चलाते हैं पता नहीं, इनको लाइसेंस कौन दे देता है, ऐसे ही है, ये तो ये है सारी सारा दिन. सिर्फ एक दिन वो नहीं करना है, सब कुछ करना है, सिर्फ एक दिन डिस्टर्ब नहीं होना, स्टेबल रहना. एंड यू विल रियलाइज इसके लिए कोई विधि कोई तरीका सीखना नहीं है कहीं से, इसको सिर्फ याद रखना है कि मुझे एक दिन स्टेबल रहना. एंड यू सी हाउ मच एनर्जी यू विल सेव, डेफिनेटली.
0: सो ये जो स्टेबिलिटी है ये हमें कितनी स्ट्रेंथ देती है और कितना हमें एनर्जी देती है एक्चुअली, कितना कुछ और करने के लिए करती है. तो ये हम अपने साथ करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए रहेगा. और आपसे हर बार कहेंगे कि कुछ भी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, खुला निमंत्रण हर बार की तरह. तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. सिसे शिवानी, जो जो आज हमने समझा है उसे हमने किया तो है, ट्राई किया है उसे समझे, लेकिन एक और बात समझ में आई हुई है कि साइलेंस में जैसे बैठते हैं वो डीप हमारे सबकॉन्शियस में जब बैठने लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मिनट अगर हम रिफ्लेक्ट करें.
1: कम्फर्टेबल होकर बैठे और अपने थॉट्स को कॉन्शियसली क्रिएट करने का प्रयास करें. लेट मी लुक एट माई सेल्फ, द क्रिएटर, द मास्टर, द पावरफुल बींग. आई, द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, हैज अ चॉइस. मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, आई चूज स्टेबिलिटी. चाहे कोई कुछ भी कहे, आई चूज स्टेबिलिटी. और जैसे ही आई रिमेन स्टेबल, सिचुएशन परिवर्तन हो जाती है. एक क्षण के लिए अपने आप को उस व्यक्ति के सामने देखें जो आज दिन तक हम समझते थे कि ये मुझे गुस्सा दिलाता, ये मुझे डिस्टर्ब करते. अपने आप को उनके सामने देखिए, वो वैसे ही है, वैसे ही बोल रहे हैं, वैसा ही व्यवहार, लेकिन अपने आप को देखें. आई एम स्टेबल. उनके बोल, उनके व्यवहार मेरे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते. आई चूज माई रिस्पॉन्स बिकॉज आई एम द पावरफुल बींग. ओम शांति.
0: ओम शांति. अगर इन रिफ्लेक्शंस को देखें तो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो बाहर से तलाश रहे थे, इन सॉफ्ट इमोशंस, इन्हें हम सॉफ्ट इमोशंस कहते थे, चाहे वो हैप्पीनेस था, पीस था, लव था, वो मुझे कितना शक्तिशाली बनाता है. तो आज खुशी की और शांति की, स्टेबिलिटी की इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें. आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार।
1: ये भारत की सेना, इसके इन रूपों को अभी भी हम समय समय पर तो कभी नजर पड़ जाती है, लेकिन सातत्य रूप से हम इस शक्ति को कभी कभी भूल जाते हैं। अगर मूल्यों के आदर्शों के लिए जीवन मृत्यु का जंग खेलने की नौबत आई, हिंदुस्तान की सेना कभी पीछे नहीं रही। ये शौर्य स्मारक हम सबके लिए तीर्थ क्षेत्र है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्रेरणा का मंदिर है। हम देखे तो सही, अनुभव तो करें, हम जाने तो सही सेना है क्या, जिंदगी क्या है उनकी, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है कि रग रग में हिंदुस्तान समाया हुआ है।
0: चौदह अक्टूबर सन 2016 भोपाल। शौर्य स्मारक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। एक साल पूरा हुआ। अरेरा हिल्स भोपाल की भौगोलिक सुंदरता को आत्मसात किए 51,250 वर्ग मीटर में फैला ये स्मारक लगातार भारतीय सेना के शूरवीरों की महागाथा सुना रहा है। उनके त्याग, बलिदान, उनके जीवन और उसकी कठिनाइयों की कहानी कह रहा है। देश विदेश से लोग इसके भ्रमण के लिए आ रहे हैं। इसकी एक बरस की यात्रा में लगभग 11 लाख लोगों ने यहां आकर अपने भाव पुष्प अर्पित किए। अनगिनत सर यहां एक साथ झुके। कितने ही भीगे हुए से मन यहां आकर मौन हुए, जैसे ये राष्ट्र प्रेम का भाव कुंभ बन गया, हमारे वीर सैनिकों के शौर्य और शहादत का पूजा घर बन गया। इस धरती पर मनुष्य के अस्तित्व की कथा शौर्य की कथा है, पराक्रम की कथा है। अगर हम मनुष्य की विकास यात्रा पर नजर दौड़ाएं, तो वहां हम युद्ध और शूरवीरता का ही इतिहास पाते हैं। नवपाषाण काल में भी भोजन के लिए शिकार था, एक युद्ध जहां शौर्य की आवश्यकता थी अस्तित्व की रक्षा के लिए। कबीले हों या राजवंश, वहां भी सत्ता के लिए संघर्ष था, धर्म के लिए संघर्ष था, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष था। ये सारे संघर्ष मनुष्य के शौर्य की ही कथा कहते हैं। इस तरह शौर्य का इतिहास मनुष्य के इतिहास के साथ साथ चला। आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही मनुष्य के भीतर और की चाह ने, लालच ने प्रवेश किया और इस लालच ने ही साम्राज्यवादी लिप्सा को जन्म दिया। इस तरह उसने दूसरे देशों पर चढ़ाई की, आक्रमण किए, उन पर कब्जा किया और जबरदस्ती उन पर शासन किया। और वो शौर्य ही था जिसने पराधीन देशों के अंधकार भरे दिनों में उजास भरा, उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए सभ्यता के विकास के साथ साथ राज्य की सुरक्षा के लिए सेना की अवधारणा का जन्म हुआ। सेना अर्थात शौर्य और पराक्रम से भरे ऐसे वीरों का समूह जो या तो मिट जाने या विजयी होने की भाषा समझता है, उसे कोई दूसरी भाषा आती ही नहीं।

0: मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही संघर्ष, शौर्य और युद्ध का अस्तित्व तो रहा ही है, सेना का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। मनुष्य की सामूहिक बसाहट के साथ ही सामूहिक संघर्ष भी जन्मा होगा और किसी अनाम सेना ने बहुत पहले ही अपने शौर्य का परिचय दिया ही होगा। लेकिन पौराणिक ग्रंथों की कथा हमारी स्मृति को भगवान श्री राम की वानर सेना से जोड़ती है, फिर आगे चलकर महाभारत काल में चतुरंगिणी सेना की चर्चा करती है। चतुरंगिणी सेना अर्थात जिसमें पैदल सेना, हाथी, घोड़े और रथ की सेना शामिल है। हमारे इन्हीं ग्रंथों में अक्षोहिणी सेना की भी व्याख्या है, यानी आगे बढ़ती हुई एक ऐसी सेना जिसके चलने से उड़ने वाली धूल से 1000 घड़े भर जाएं। इस तरह देश, काल, मनुष्य के विकास और युद्ध की विकटता के आधार पर सेना के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा। आज मनुष्य के विकास ने नए आयाम छू लिए हैं। धरती पर तो वो जी ही रहा था, पानी और हवा में भी उसके रास्ते अब आसान हुए हैं। इस तरह जमीन, आसमान और जलीय सीमाओं की रक्षा के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रादुर्भाव हुआ और हमारे देश में भी इन तीनों ही सेना के जवान हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं। हमारी ही तरह परिवार तो उनके भी हैं, लेकिन उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना है। अपनी माँ की चिंता उन्हें बेशक है, पर उसके पहले मातृभूमि की चिंता है। उन्हें याद रहता है कि वो किसी के पुत्र हैं, लेकिन वो याद रखते हैं कि इस धरती के लाल वो पहले हैं। इसीलिए सारे सुख, सारा आराम, अपना परिवार, अपने सारे मोह त्याग कर वो डटे रहते हैं कर्तव्य पथ पर और वक्त आने पर अपना जीवन भी बलिदान कर देते हैं। देश के ऐसे ही अमर शहीदों की स्मृति को संजोए हुए है शौर्य स्मारक भोपाल। इसीलिए युवा हों, बच्चे हों या बुजुर्ग, राजनेता हों, संत हों या कलाकार, या हों सेना के अधिकारी, सभी इस महातीर्थ के दर्शनों के लिए लगातार आते रहे।
1: मैं 1968 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था। इतना अच्छा कंसेप्ट है इस जगह का और मैं चाहता हूं कि ये शौर्य स्मारक हर स्टेट में ऐसे स्मारक बनाने चाहिए जिससे कि जो भी सिविलियंस है उनको पता चले कि व्हाट इज आर्मी, व्हाट इज नेवी, व्हाट इज एयरफोर्स। निर्वलजीत सिंह शेखों के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है। निर्वलजीत सिंह शेखों को परमवीर चक्र मिला, एयरफोर्स का जो फर्स्ट परमवीर चक्र मिला वो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों को। उस समय मैं उसी बेस पे ही था। निर्मलजीत सिंह शेखों साहब का जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया तो उन्होंने जिस तरीके से उसको टैकल किया करने के बाद, बट वो चार थे और ये अकेले थे, फिर भी इन्होंने उनके दो लोगों को तो मार गिराया। उसके बाद उनके एयरक्राफ्ट भी शॉर्ट हो गया और वो अपने जान गंवा बैठे। उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया।
2: मैं एक जैन संत हूँ, नाम अक्षय ऋषि है। शौर्य स्मारक और ये सारा दृश्य देखकर इन सैनिकों ने जो देश के लिए किस तरह बलिदान करते हैं, मन में जो भाव जागृत हुए कि ये सेना अपने देश के लिए कितना बलिदान देते हैं, और उनकी ये बलिदान देखकर एक शौर्य भावना मन के अंदर जागृत होती है।
3: नमस्ते इंडिया, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये हमारा यूथ के लिए जानकारी है। बेसिकली हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं मिलती है, काफी कुछ सीखने को मिला गैलरीज में, कैसे कैसे वॉर्स हुई, किस किस तरीके से यहाँ पे मॉडल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ।
4: मेरा नाम भावना वर्मा है। यहाँ आकर मुझे बड़ा इमोशनल सा एहसास हो रहा है कि हम लोग इतने सामान्य तरीके से रहते हैं जिनके कारण इतनी, जो लोग इतनी कठिन परिस्थितियों में लेकर हम लोग को एक सुरक्षित माहौल प्रदान कर पाते हैं, और जो अपना सब कुछ संसार छोड़ के सब रहते हैं विषम परिस्थितियों में भी हमारे लिए सुरक्षित माहौल बनाते हैं।

शौर्य स्मारक हमारे शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन है, जिसका वास्तुविधीय रूपांकन किया पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल ने और इसका निर्माण किया नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग राजधानी परियोजना प्रशासन ने और इसी परिसर में निर्मित शौर्य वीथी की परिकल्पना आकल्पन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय का है। वास्तुकला की दृष्टि से शौर्य स्मारक भवन नहीं वरन अभवन है। शौर्य स्मारक को जीवन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे जीवन, युद्ध का रंगमंच, मृत्यु तथा मृत्यु पर विजय, इन चार प्रांगणों की श्रृंखला के रूप में दर्शाया गया है। इसके रूपांकन में जीवन मृत्यु, युद्ध शांति तथा मोक्ष उत्सर्ग जैसे जटिल और अव्यक्त अनुभवों को सहज सरल तरीके से रूपांकित करने के लिए इसके आकार प्रकार रंग रूप और सामग्री का रोचक ताना बाना बुना गया है। यहाँ निर्मित 62 फीट ऊंचा शौर्य स्तंभ एक सैनिक के पूरे जीवन को दर्शाता है, जिसे उसने अपनी इच्छा से स्वीकारा है। ये स्तंभ हमारे सैनिकों की अंदरूनी शक्ति और साहस की ओर संकेत करता है। ये अपनी मूक भाषा में हमारी तीनों सेनाओं की ताकत और स्थिरता का बयान करता है। इस स्मारक में एक लाल स्कल्पचर कुछ इस तरह से निर्मित है कि एक नजर से ये शहीद के रक्त की बूंद सा दिखता है, तो दूसरी दृष्टि इसमें एक नमस्कार का भाव देखती है। इस तरह ये स्कल्पचर शहीदों के रक्त की हर बूंद को नमस्कार करता है। आधार तल में निर्मित शौर्य वीथी देश की तीनों सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और शहादत का एक जीवंत चित्रण है। इतिहास और साहित्य में शौर्य को दिखाते हुए हमारे राष्ट्रध्वज का इतिहास बताते हुए ये वीथी सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में अब तक पदस्थ भारत के राष्ट्रपतियों की पेंटिंग्स प्रस्तुत करती है। जल, थल और वायुसेना के सभी अध्यक्षों से हमारा परिचय कराती है। भारतीय सेना के बंकर और सियाचिन में तैनात सैनिकों का डायरोमा सैनिक जीवन की कठिनाई की कहानी कहता है। भारतीय सेना द्वारा लड़े गए युद्ध की फोटो प्रदर्शनी और परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिकों की थीमेटिक पेंटिंग्स की गैलरी उनकी शौर्य गाथा का गान करती है। वीरता के विभिन्न पदक, सेना के जहाजों के मॉडल्स, युद्ध क्षेत्र, टैंक आदि के मॉडल्स, इस तरह एक पूरा सैन्य संसार यहाँ रचा बसा नजर आता है। इसे देखते हुए अपनी सेना के लिए गर्व और श्रद्धा दोनों ही भाव एक साथ प्रवाहित होते हैं। भारतीय सेना के शूरवीरों और शहीदों को समर्पित शौर्य स्मारक में एक अनंत ज्योति प्रज्वलित है, जो कहती है हमसे कि शहीद मात्र एक मनुष्य नहीं है, वो एक महागाथा है जो लगातार हमारे आसपास गूंजती रहती है। शहीद एक महाकाव्य है जो हमारी सांसों में बहता रहता है। ये जीवन नश्वर है, लेकिन शहीद महाजीवन है जिसका होना सदियों तक सुनाई देता रहता है। शहीद किसी झील सा शांत एक चेहरा है जो हमारी खुशी, हमारे आराम, हमारी सुरक्षा, हमारे चैन और हमारे उत्सवों के पीछे दूर, बहुत दूर किसी सितारे सा उभरता है, झिलमिलाता है, डूब जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, परिकल्पना एवं मार्गदर्शन श्री मनोज श्रीवास्तव, समन्वय किया संजय यादव ने, और स्वराज संस्थान संचालनालय के लिए इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।
1: ये वतन
2: श्रोतेहो, आताच आपण वतन का राग हा कार्यक्रम ऐकलात। स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाळ यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम विद्यावाणी रेडिओवरून 107.4 FM वरून प्रसारित करण्यात आला।

अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी पर 90.4

तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने सुहाने गाने सुहाने सुहाने आपके लिए लेकर आया है रेडियो शिनेल 90.4 FM आवाज।

0: जीवन के रंग अनेक,
1: जिसमें होगी बातें
2: कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर,
1: और कभी कभी बातें होगी
2: छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर,
1: रेडियो सुनेरी 90.4 FM।
0: जीवन के रंग अनेक,
2: आवाज तुमचा आमचा।